जप आदि सच जुगाद सच है ही सच नानक खुशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे

जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंदक मेरा सखा सखा जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता

जो हमारी बेद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो हो आपे हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता।

गुरु अर्जुन विघ्न नके नाशक, विघ्न नके नाशक। श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर

माणिक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह

जीवन काल अंदर करीब 10,000 तो उत्ते सिखां दा कतल करवाया। इतना बड़ा पापी सी है, 10,000 सिखां दा कतल करवाया। अज तो सानू थोड़े जे लगदे होणगे, पर उदो कौम की गिणती बड़ी थोड़ी सी। उन्हां समयां च किन्ना कु हाल होंदा होएगा। यह जी जिंदगी दे आखरी कतल ने। इन्हें फिर कोशिश की भी किसी तरह मैं उस भाई तारू सिंह पकड़ के लेके आवां। बंदे भेजे ने, यह हर भगत नंजनियां भी पापी नाल गया है, ते इन्होंने जाके भाई तारू सिंह जी होरां नूं गिरफ्तार कर लिया। अफरीन ऐसी अम्मावां ते, धन ने माता, अपने पुत्र नूं जदों गिरफ्तार करके लेके तोर के चले ने। कुछ एक विद्वाना की ऐसी भी है, सतवीर सिंह ने लिखे, पर सतवीर सिंह की लिखता में एक बड़ी वड्डी मुश्किल आती है। ओ किसे अपनी बहुती बारी ए नहीं दसदे भी यह पिछोकड़ मैं केड़ी किताब चो लिया, तां करके सतवीर सिंह की मुश्किल बनती। वैसे सतवीर सिंह ने लिखिया है भाई उस वेले दी भैण नूं भी गिरफ्तार किया गया सी, पर कुछ एक लोगों ने उहदे बदले सोना दे के उहनूं छुड़ा लिया सी, क्योंकि भाई तारू सिंह दा अपने इलाके च मिलवर्तन बहुत चंगा सी। गल वक्री जिहड़ी मैं करनी चाहुंदा, जदों उहनूं भाई तारू सिंह नूं गिरफ्तार करके लेके चले, मां दरवाजे कोल खलोती है, मां दी अख विच इक भी अथरू नहीं आया। मां ने अपने पुत दी पिठ थापड़ी, कहण लगी पुत वे तेरे कोलों कोई घर दे हालात छुपे होए नहीं, तैनू कली कली गल दा पता है, तेरा बापू छोटी उम्रे चढ़ाई कर गया सी, मैं जिवें किवें अपनी जिंदगी दे दिन कटदी रही, ते हरेक मां नूं इको इक आस हुंदी कल मेरा पुत वड्डा होवेगा ते मैं सुख चैन दी रोटी खावांगी। पर इस वेले जालम ने वक्त इहो जिहा बना दिता, तू मां दीआं अक्खां दे सामने गिरफ्तार होके चले आ, पुत वे इक गल मेरी अज तू पल्ले बन लमी, तेरी मां किसे दे घर भांडे मांज लवेगी, पर चेता रखी ए सिर उठा के तुरेगी, उतवे चेता रखी तेरी मां किसे दे घर गोहा कूड़ा कर लेगी, किसे दे घर दीआं सफाइयां कर लेगी, लेकिन तेरी मां जमाने अगे सिर उठा के तुरेगी। पुतवे मेरी रोटी दा फिकर ना करी, मेरे बुढ़ापे दा फिकर ना करी, तू एक कृपा करी, तू एक गल चेता रखी, तू अपनी मां नूं ओना ही चंगा लगेगा, लेकिन पुत किते गलती ना कर आमी, तेनू जालम ने बड़े तसीहे देने ने, तेनू जालम ने बहुत कुछ तसीहे दे दे के मनाउणा, पर पुतवे किते सिक्खी नूं दाग ना ला के आ जाई, जे तू सिक्खी नूं दाग ला के आ गया तेरी मां जिंदगी भर कदे सिर ऊंचा कर के नहीं तुर सकेगी। मां दे कोल खलो के उतने आशीर्वाद लई, कहन लग्या मां मैं कोशिश करांगा मेरा ध्यान करे घर विच ना आवे, मैं गुरु चरणा विच ध्यान जोड़ के रख सका। तुरिया अगे राह विच भैन खलोती है, भैन ने गलवकड़ी पा ली, रो पई नहीं रोक सकी, कहन लगी वीरिया मैं भी तेनू इको एक बेनती करनी है। भैणा जदों छोटियां जी होंदियां ने ना, उदों तो अपने मन विच भरम पाल लैंदियां ने पे एक दिन वक्त आवेगा मेरा प्यो मैनू अपने हथी डोले च बिठावेगा, लेकिन मेरा प्यो तुर गया सी वीरिया, तू मेरे नालों वड्डा सी, मैं तेरे ते आसा बन रही हां, मेरा वीरा मेरा बहुत चंगा है, मेरा वीरा मेरे बापू वर्गा ही फर्ज निभाउंदा रिहा, तू मैनू बड़ा प्यार दिता वीरिया, ते मेरे मन दी तमन्ना सी जदों मैं इस वेड़े विचों कर्म चुक के अपने कंत सुहेलड़े दे घर जावांगी, ते मेरे वीरिया मैं आस रखी सी तू मैनू बड़े अदब नाल तोरेगा, लेकिन अज भाणा इहो जिहा वरत गया। वीरिया मैं तेनू इको बेनती करनी चाहनी है, मैं किड्डी सुभागी भैन होवांगी जेड़ी अपने वीरे दे लहू दी मेहंदी ला के, शहीदां दे खून दी मेहंदी ला के मैं अपने सोहरे घर जावांगी। वीरिया एक गल चेता रखी, मैं तेरी पग नूं कदे दाग नहीं लगन देंगी, पर तू सिक्खी तो मनुक्कर ना होवी। घर विच तीन ही जने रहिंदे सन, चौथा कोई रहिंदा नहीं सी।

तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलों विच सुभायमान सतसंगी प्यारियो करो कृपा असीसां बख्शो। अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछलेरे दिनां विच आपां विचार दी सांझ पाई सी जस पत राय दा कतल होया उस पापी नूं नरक सधारिया। लख पत राय बुखला उठा कन्नू बाण दे शंभ विच लुके सिखां दे लई उन्हें फौजां लेके घेरा पा लिया। एक पासे फौजा ने एक पासे पहाड़ी है उदे उत्ते प्रबंध कीता होया है। तीसरे पासे रावी है चौथे पासे इस पापी ने आप अग ला दिती जंगल नूं। गुरु के सिख जिवें किवें हो सके विचों कुछ इक निकल भी गए पर बहुते सिखां दा इत्थे शहादतां दे जाम पीते गए। करीब इतिहास ए गल आखदा है इको दिन विच 10,000 दे नेड़े सिख जेड़ा ओ शहीद होया। कुछ 7,000 दे नेड़े उत्थे ही शहादतां दे जाम पीते ते 3,000 पकड़ के लेके गया नखास चौंक लाहौर दे विच। इत्थे शहादतां होईयां इस दे मगरों लखपत राय पकड़िया जांदा है क्योंकि दोनों भरावां दा जंग हुंदा है। यहीया खान दा ते शाह निवाज दा दोवें जकरिया खान दे पुत्तर ने। उहदे दरमियान ये लखपत राय यहीया खान भज जांदा है उहनूं पकड़िया जांदा है। वैसे पकड़ के जेल विचों भज जांदा है। लखपत राय नूं बुरी मौतें मारिया जांदा है। ये इतिहास आपां कल रोज विचारिया सी किवें गुरु के सिखां ने औखे वेले बेअंत उस रावी दे किनारे किनारे जदों गए। इह प्रतीत हुंदा जिवें लहू दे अथरू रो रिहा होवे इतिहास। उदों पैरां तों तुरिया नहीं जांदा घोड़े साथ नहीं देंदे ते अपने कपड़े पाड पाड़ के उन्हां ने अपने पैरां थले लपेट लपेट के उह जिहड़ियां विच छाले हो चुके सन उबले होए रेते विचों ते उह पार जांदे रहे। इत्थे तक इतिहास की लड़ी आप कल विचारी सी अज उस तो अगे सांझ पाउणा चाहुंदा। हुण जदों यहीया खान का भी प्रभाव घट गया क्योंकि उते भज गया ते लखपत राय भी मारिया गया उदों इहदा सका भरा शाह निवाज वह लाहौर का हाकम बनदा है ते इहदा जिहड़ा दीवान है वह दीवान कौड़ा मल बनता है। दीवान कौड़ा मल खत्रियां विचों ये भी भावें हिंदुओं विचों है पर बहुत दाना सियाना पुरख है ते सिखी नाल इहदा स्नेह है। इसलिए इहने लखपत राय भी इहनूं पकड़ के दिता सी। इहदे वेले कुछ एक सिखां नूं सौखा साह आया ते गुरु के सिख सन जिहड़े ओ अमृतसर साहब की पवित्र धरती उत्ते आउण लग पे। यह 1746 दे विच आना वरत्या सी। मैं एक बारी फिर बेनती करा मार्च अते मई दे महीने तक यह जिहड़ा छोटा घल्लूघारा वरत्या सी। हुण 1746 तो बाद विच सिख एक दूजियां थावां ते विचरदे रहे। जदों कदे मौका मिले उदों अमृतसर साहब की पवित्र धरती उत्ते एक गल चेता रखियो। मैं सारे इतिहास विच जो कुछ तुहाडे

गुरु सवारियों जी, असीसा बख्शो, प्यारियों लाखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले समय तो सिख इतिहास दिया विचारां दास तुहाडे नाल सांझियां करदा रहा सी। अज आप कोशिश करनी है गुरु साहब कृपा कर 1800 तक आप विचार कर सकी। मिसलां की गल दस तुहाडे नाल समझी कर रहा सी। मिसलां दे जिन्ने भी मुखिए सन वो बुजुर्ग हो गए। पहली गल यह हुई भी वह बुजुर्ग होने के नाते थोड़े कमजोर हो गए, वह गल ना रह सकी। दूजी गल, जेड़े लोग किसी वेले अमदाली की शानी भरते सन या मुगलों की शानी भरते सन या वक्त के हाकमों की खुशामद करते सन, उहीओ लोग इस मिसलां दे सरदारां कोल आ गए। हुण खुशामद करना उन्हां दे खून विच सी, उन्हां ने इन्हां सरदारां दी भी खुशामद करनी शुरू कर दित्ती। ऐसा भाणा वरतिया, इह सरदार जिहड़े कल किसे कोलों नहीं सन हारदे उह जबान दे मिठियां कोलों हारन लग पए। जिहड़े तलवारां नाल तीरां नाल कदे ना हारे उह जबान दे मिठियां कोल हारन लग पए। खुशामद है ही इहो जिही जिहड़ी मनुख दे अंदरले हंकार नूं जगा के हंकार दा रोगी, होमे दा रोगी बना दिंदी है। अनेकां तरह दे इहो जिहे लोगां ने। दूजी गल, भरा मारू जंग उवें तुहाडे नाल पिछले दिनां च सांझी कर बैठे होए आं। एक दूजे तो एक दूजे दियां मिसलां दे उत्ते चढ़ के जाना यह उन्होंने किरदार बना लिया। इसे दे दरमियान जदों इस तरह के हालात बन गए तो इन्हां विचों जिहड़े बाकी कुछ एक चंगे सरदार सन उन्हां विचों कुछ चढ़ाई भी कर गए, अगलियां मिसलां दे जिहड़े होर सन जथेदार होर बन गए। उहदे नाल की होया भी जिहड़ी गल अगे सी ना उह ना रही। इत्थों तक मैं बेनती करा, मेरी जबान साथ नहीं दिंदी मैं किवें कहां, पर लेकिन अपना इतिहास है। दो पक्ष आपां नूं लुकाउणे नहीं चाहीदे। यह माड़ा पक्ष है, उह लोक सन जिहड़े उह नशियां दे आदी हो गए, भंग पीण लग पए, शराबां पीण लग पए। जिहड़ी सिक्खी दे विच कदाचित भी कबूल नहीं है उन्हां औगुणां नूं उन्होंने धारण कर लिया, बर्बादी दे राह तुर पए। छोटी जी बेनती विच होर करदे आं, अहमद शाह अब्दाली की गल आपां कई बारी विचार चुके। 23 अक्टूबर 1772 नूं उमर गया तैमूर शाह, उह 1793 तक जिंदा रिहा पर उन्हें बहुतियां लड़ाइया सिखां नाल नहीं लड़ियां। वो एक ही गल कहिंदा सी, मेरे बापू ने लड़ के की खट लिया। पर उहदा जिहड़ा पोतरा सी शाहजमान, यह तैमूर शाह का छोटा पुत है, इहने मन विच भावना बनाई। इहदी वृत्ति अपने पिता वर्गी तैमूर शाह वर्गी नहीं है, इहदी वृत्ति अपने दादे वर्गी अहमद शाह अब्दाली वर्गी है। इहने कुछ एक हमले किते, जदों इह तख्त ते बैठिया तेरे हमले किते, 1795 विच हमला किया, 1796 विच हमला किया, 1798 विच हमला किया, 1799 विच 14 जनवरी नूं वापस चला गया। इसे नूं इह सम्मन बुरज दे विच बैठे नूं महाराजा रणजीत सिंह ने मंगारिया सी। इह उह जो तैमूर शाह दा पुत्तर। हुण इह भी जिहड़ा सी उह किनारा कर गया, मुड़ के इन्हां दे झगड़े आपस विच शुरू हो गए।
ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1793 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ 1799 ਚ, ਖਿਮਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹ ਘਟਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਿਆ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਦਾਦੂਦੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂ ਵਧੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ, ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਦੂਦੀਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੇ, ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈ। ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲੇ

0: बसी बसी जिस थाए बस है पठान बस है बास पठान को दीनों बिपर बताए।
1: तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी भी सजी होई गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया सहिदा बेग छरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी को 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजा। शाम 2 घड़ियां दिन बाकी सी जदों चले ने सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जा के घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं ही लियाउणा होर किसी नूं तंग नहीं करना। महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल अते उस ब्राह्मण दी स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के ਸਜੇ ਹਨ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
0: ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਪਈ तुरत सुबत जैसा जिस भाए जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसे डर तो बिना किसे खौफ तो यह साडा राज है मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता है मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है अचानक ही जाके सिंघा ने उदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो गयो पठान संबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकता है कवि जी कहंदे ने किसी ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया हो सकता वो इलाके दे च बदनाम होवे जबर खां पहला भी लोगों दियां धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं कीती है कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनूं पकड़ लिया।
0: जिनी को एक तुरंग चढ़ायो ए कुरीत फल सब नूं सुनायो।
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा पठान नूं भी खड़ा कर लिया पिंड वालिआं नूं इकट्ठा करके ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੁਣਾਇਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश हुंदे हन।
1: उठ करना निद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धि सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने माता

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैना करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे, अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: महाराज ने कहते एक अजय सिंह तुम खड़े किए उसे दरवाजे से मूहरले पासे पहरे से वो सारा दान ए खो लिया है इन्नी काहदी इच्छा जाग पई उन्होंने
1: आवन जानो बंद करते दिज आदक सर संग
0: तो इस कृपा कहते आना जाना ना सारे ना बंद करता आप ब्राह्मण ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे ये कोई चंगी गल है या महाराज सच्चे पातशाह नु सुना रहे हन
1: कहे सुने मैं किसके नाई उचित अनुचित लख न सकाई
0: अरे थोड़े सिंह बारे ही हुंदे जांदे ने ये तो किसी के कहे सुने च नहीं है ये तो ना योग अयोग जानते ने तो इस प्रकार के नाल हुण सिंह तो महाराज के सूल ते चलणगे जो सिंघा नूं हुक्म आ सी तां ओह कम करना हुण माता जी कहिंदे मेरे अखे नहीं लगदे ओह जिवें पिछे जे माता जी ने एक बारी अपनी मर्जी नाल ही कहता आखे लंगर एक टाइम कर दिओ मसंदा ने जाके डराता माता जी काल पै गया चारे पासे बई हुण तां बड़े लोग आ गए हुण तां अपना अन्न मुक जावेगा आपां वी भुखे मर जावांगे माता जी ने सतगुरु जी नूं कहण दी बजाए सीधा ही हुक्म करता भी लंगर एक टाइम कर दिओ जदों महाराज कोले खबर गई तां महाराज ने माता नूं पुछया माता जी ठीक असीं थोड़े साहिबजादे आ पुत्र हैं पालिया ठीक है पर गुरता गद्दी दे मालक आ हुक्म संगत उत्ते थोड़ा नहीं चल सकता तुसीं किहनूं पुछ के लंगर इउं कीता इह तां एक वो गल होगी कि बेसिदकियां वाली गल होगी महाराज ने कहा कि रोज तो तुसीं पढ़दे हो काहे रे मन चितवै उद्दम जाहर हर जीव परिया सैल पत्थर मैं जंतु पाए ता कर जगागा कर धरिया माता जी तुहाडा अपना स्थान है सत्कार योग है पर तुसीं अपनी मर्जी नाल कोई बचन ना करिया करो फिर काफी महाराज ने वीर रस विच आके बचन भी करते मसां बख्शाए सी सो इस करके हुण भी माता जी नाराज ने कहिंदे ये थोड़े जिहड़े सिंघ ने ये अपनी ही मनमर्जियां करते हैं
1: श्री सतगुर ऊचे बोल मात के सुने श्री सतगुर श्री मुक्ते भने
0: जदों माता जी के उची उची बोल सुने तो उस वक्त सुभायमान मुख विचों गुरां ने इस तरह वचन कहा
1: मात कोप के सन अस कीना हुक्म तुमारो को ने चीना
0: सो उस वक्त माता जी कादा गुस्सा कीता है तुहाडे हुक्म नूं जाणिया नहीं है किसने नहीं जाणिया इने तुहाडा हुक्म मन्या दसो मैनू
1: सुन सुत ते प्रसंग कह दयो तौ सिर सदका बिपरन लयो
0: सुन के अपने साहिबजादे भाव दसवें पातशाह तो माता जी ने सारी गल सुनाई तुहाडे सिर सदका मैं ब्राह्मण नूं दान दिता सी मैं सारिया चीजा ब्राह्मण नूं दित्तियां सन
1: ले जा सो सिंघ न छीने वे निसंग अस उदम किन्ने
0: देखो किन्ना उपद्रव कीता उन्होंने निसंग होके आ सारिया चीजा उन्होंने खोह लिया ब्राह्मण दे पासों
1: श्री सतगुरु

0: करके इस तरह बैठ गए, ढिले पै गए, हौली हौली दस पिंड भी पिंड करद्या करद्या मेरा राज खोणगे, फिर थोड़ा खोणगे, फिर साडे सारयां दे राज खोणगे। इस करके आपां नूं ढिले नहीं पैना चाहीदा।
1: नित प्रत दल सिंगन को आवे, लूट कूट कर मिट हट जावे।
0: हुण नितां प्रति सिंघां दे दल आउंदे ने साडे इलाके दे विच, लुट के फिर वापस मुड़ जाते ने।
1: वाजित रहे बंदूक सदाई, मरे कि मारे फते बुलाई।
0: गोलियां की आवाज आउंदी रहिंदी आ, कदे किते गोली चल गई, कदे किते मारते, कदे किते मारते। इस तरह ये हमेशा ऐसा कर्म करते हैं।
1: शाह पुकार सुनी इक सारी, लड़ियो आन लश्कर तब भारे।
0: हां, एक बारी बादशाह ने साडी पुकार जरूर सुनी है, भारी फौजां भेजियां हन उसने एक बार।
1: अब कह जाए कहां कह शाहू, निर्बल अदक लखै मन माऊ।
0: तो इस करके हुण जे आपां हुण जाके कहिंदे आ उत्थे बादशाह नूं, फिर वह जानेगा कि बहुते ज्यादा राजे जिहड़े ने निर्बल हो चुके हन।
1: बार बार की सुने पुकार, कै खिज परे करे बुरे यार।
0: बार बार जदों आपां इस तरह पुकार करांगे उन्हां दे कोले, बादशाह खिजेगा अपने ते साडे नाल माड़ा कर्म करेगा भी तुसीं इन्ना भी नहीं कर सकते, एक जाना हैगा, उन्हां पांच चार हजार जाने हैगे आ, थोड़े कोल इन्नियां लखां फौजां ने, तुसीं कख नहीं कर सकते, और झिड़कां पावेगा।
1: एक सौ जे गुर के सिख मरे, आए हजारों के सुन धरे।
0: जे महाराज का सौ सिंह शहीद हुंदा है, उहदी जगह ते हजारां दी गिनती च होर केस धारण करदे ने, भाव अमर छक लैंदे ने, ककार पहन लैंदे ने। इस तरह साडा उत्थे की मुकाबला है।
1: ने निपटे ने पाए पराजय।
0: सो इस करके ना निपटिए ते ना हारिए।
1: आन लाभ को लखै न काजै।
0: ओ नहीं जानदे कि हान की है, लाभ की है। ओ ना साडे नाल निपटदे मुकदे ने, ना हारदे ने, ना ये समझदे ने कि हां लाभ की चीज है।
1: सुनो ग्रीशो करो उपाय।
0: सुनो ग्रीशो तो भाव पहाड़ी राजे हो, आपां हुण मिलके कोई जतन करिए।
1: बिगड़त कारज समदाए।
0: इस तरह तो अपना सारिआं दा काम जिहड़ा है वो बिगड़ जाएगा।
1: सुनत घुमंड चंद तब पाखा, को उपाय तुमने अबलाखा।
0: घुमंड चंद राजा कहण लग्या, चलो ये भी ठीक है कि तुसी सानू कहंदे हो, तुसी की सोचिया है, थोड़ा की इरादा है कि आपां नूं की करना चाहिदा है।
1: बिना लड़न ते अपर ना कौ, मिले ना बचो छीन ले सो।
0: सो बिना लड़न तो होर तां कोई रस्ता नहीं है, इस करके उह सारा कुछ अपने तो खो लैणगे, ना कोई मिलना ना बचना।
1: प्रथम शाह टिक बने न जाना, सेना संच काल कमसाना।
0: पहला बादशाह कोल अपना जाना बनता नहीं है, पहला तो आपां फौजां कट्ठियां करिए, फिर कमसाण दा जंग करिए।
1: लड़बे कहो लिप तरै जे आलस, राज करन की तरै न लालस।
0: सो इस करके जे राजां नूं कहने आ आलस बड़ी करदे ने, इस करके तुसीं राज दी जिहड़ी हुण आलस है ना, ये ढिल मठ है, इहदा तुहानूं त्याग करना चाहीदा है।
1: रिप बस होए न दंड बहीना, वधै प्रताप सदंड अधीना।
0: क्योंकि दुश्मन कदे भी दंड तों बिना अधीन नहीं हुंदा, दंड देना चाहीदा है। अते जिहड़ी प्रजा है ना, ये प्रजा दी इक गल हैगी आ कि

0: मैदान जंग नू छड के तो वापस श्री आनंदपुर साहब जा रहे ने।
1: पाछे करत न डीठ भी जात आनंदपुर ओर।
0: महाराज ने मुड़ के पिछे देखे ही नहीं है, वापस श्री आनंदपुर साहब चले है।
1: जो पई गुरु चरित्र को पिक भी सुनाए, ने मारन को शस्त्र उठाए।
0: महाराज के कौतक नू देख के बड़े हैरान हुए कि महाराज ने इस बार कोई तनख बाण नहीं चलाया, कोई शस्त्र नहीं उठाया।
1: ने मारन को शस्त्र उठाए, केत कलर्त पाच को हटके।
0: हुण कई सिंह ने भी शस्त्र नहीं उठाए। मैदाने जंग देखा कि महाराज जी तो चले गए वापस, पहाड़ीए भज गए उधर नू, तो इस तरह किन्ने क सिंह हट के फिर पिछे मुड़े आए।
1: रण को त्यागत इतोत सटके,
0: मैदाने जंग नू छड के इधर उधर भजे।
1: तब पहाड़ियन इन गत ज्ञान, हट कालियो हेला कमसान।
0: पहाड़ियां ने देखिया कि दसवें पातशाह तो मुड़ गए वापस, ते सिंह ढिले पै गए। सिंह कुछ ढिले पै के कुछ पिछे मुड़े आए। उन्होंने अपना दौ विचार लिया, अथवा भाई वीर सिंह ने तो इस तरह लिखिया, कहते एक पहाड़ी के उल्ले कुछ पहाड़ियां की फौज लुक के खड़ी सी। जब सिंह अगे लंघ गए पहाड़ियां के मगर पेंदे, वह लुकी हुई फौज से उन्हें सिंघां नूं पिछों घेरा पा लिया। इस करके क्यों महाराज नूं तां पता ही सी कि वह लुक के खड़े ने, इन्हां नूं नहीं सी पता सिंघां नूं। इस करके सिंघां ने इत्थे खता खाधी है, गलती की है, तां सतगुरु इन्हां नूं सजा दित्ती है।
1: बड़ी खालसे मैं बो भाज, पीछे भजे त्याग सब लाज।
0: और सारी शर्म छड़ के पीछे नूं दौड़ना पै गया, क्योंकि गुरां दा वचन नहीं मन्निया। जे वचन मन लेंदे फिर जित तां मिली हुई सी, पीछे भजन दी की लोड़ सी।
1: कमी परी शस्त्रन की मार, केतक ऊचे कीन पुकार।
0: हुण शस्त्रां दी मार पई, जदों बहुत मार पई चारे पास्यों घिर गए, उस वक्त उची उची